सतगुरु किन्ना पाया, गुरु सतगुरु किन्ना पाया, सतगुरु विचार प्रकुल कर प्रगट याक सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया, उत्तम हो विचार है जिन सचे सोच तलाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

सुत दरास्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटही। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की,

0: कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरने करुणा में सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दमो कर, राम दमो कर माधवे।
1: वाहेगुरु जी।

साध संगत भज पूरन काम, साध संगत भज पूरन काम, साध संगत भज पूरन काम, साध संगत आ

सहित निक हाजिरी प्रदान करना जी दुनिया पुला दिखिला गजबाज के पति बुलाओ जी। वाह वाह वाह।

0: है मुश्किल हो वे अत भारी हर को नाम की माहे उधारी
1: अनपुन चरण करतनी करे हर को नाम को पापर हरे
0: नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुगने रे
1: संत को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया
0: करोरी बंदना पर हर का नाम जपत निस्तर

0: हर हर अमृत बरखे।
1: जना की बर्तन नाम संत जना के मन
0: हर का नाम दास की योग हर के नाम ग्रे जन को
1: हर जस करत संत दिन रात।

0: दान हो मैं भूरत
1: नोपाती
0: तुल राम नाम विचार नानक गुरुमुख नाम जपिए।

0: प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद पूर्ण फले
1: प्रसाद परम कर पावे जे प्रसाद सुख सहज।

0: भगवती की मधुर
1: भगवंत की टल करे नित नीत मंथन अर्पय विष्णु प्रीत
0: चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को
1: पावे।

0: प्रसाद नान सच कहे
1: पंडित करे बखियान कबू मोन धारी लावे ध्यान
0: कबू तरती स्नान कबू से साधक मुख्या
1: कबू कीट हस्पतंग होए जी।

0: संत के दोखी की पूजे नयासा संत के दोखी उड़ चले नरासा
1: संत का दोख ना दिसता कोई जैसा बावे तैसा कोई होए
0: पै आ कीर्तन मिटे कोई नानक जाने सच्चा सोए
1: सब कर दिसके।

0: प्रभु सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए।
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघन न लागे कोए।
0: उस मन में कंठकार कर्म न मेरे सब व्यवहार।
1: निर्मल रसनामृत पियो सदा सुहेला कर ले
0: जियो। ठाकुर कारण सा संग बिनसे सब संग।
1: चलो मार्ग गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद।
0: हर कर्म श्रवण हर कथा दुर्गे नानक उज्जल मथा।
1: भागी ते जन

0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी,
1: सेवक के मन प्रति ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत,
0: सेवक जान्य संग प्रभु का सेवक नाम,
1: सेवक को पालनहारा सेवक की राखी निरंकार,
0: सेवक जिस दया प्रभु धारा नानक सो सेवक साथ साथ समार,
1: अपने जन का प्रदाता की अपने सेवक की सर पर रखे,
0: अपने दास को देव वडाई अपने सेवक को नाम जपाई,
1: अपने सेवक की आपद रखे ताकि गत मित कोई न लखे,
0: सेवकों को ना पहुँचे प्रभु के सेवक ऊंच दे ऊंचे,
1: प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक जय दिस प्रगटाया,
0: कल राख है बसम करे लश्कर।

0: ऐसा गुरबत भागी
1: सब दर्शन देख पुनीत परस चंदन निर्मलित
0: संग राम गुण रवि पार ब्रह्म की दर गए
1: गवे वचन करने अगर

परम सम्मान योग गुरु रूप गुरु प्यारी सात संगत जियो आप जी बहुत ही वडभागे हो जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब दे पावन अस्थान ते जुड़ बैठे हो। आप सरबत संगत ने बड़े ही प्रेम प्यार भावना दे नाल संगती रूप दे विच श्री सुखमनी साहिब जी दी बाणी दा जाप कीता। आओ पावन बाणी दे विचार नाल जुड़न दा यतन करिए। विचारां दी अरंभता तो पहला दोवें हथ जोड़ कोई भी रसना वांझी ना रहे

परम सम्मान योग गुरु रूप गुरु प्यारी सात संगत जियो, आप जी बहुत ही वड भागे हो। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक, राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान, ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब दे पावन अस्थान ते जुड़ बैठे हो। आप सरबत संगत बड़े ही प्रेम भावना दे नाल गुरबाणी कीर्तन दा लाहा प्राप्त कर रहे सी और रोजाना संध्या वेले दे दीवाना विच लड़ीवार कथा विचारां सरवण करदे आ रहे हो। कविराज महान कवि भाई संतोख सिंह जी रचेता श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ, कवि जी इतिहास विच दसदे दसवें पातशाह दशमेश पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की वडियाइयां गुरु पातशाह जी की रहमतां प्राप्त करदे रोजाना आप जी गुरु साहब जी का इतिहास सरवण करदे आ रहे हो। गुरु पातशाह जी आनंदपुर साहब अस्थान ते विराजमान होए ने, सिख संगतां आ के गुरु साहब जी दे दर्शन करदियां ने, महाराज जी दे सजे दरबार विच आ के सज बैठदियां गुरबाणी कीर्तन दा लाहा प्राप्त करदियां हन। इत्थों तक आपां इतिहास सरवण कीता, आओ अगलेरे प्रसंग नाल जुड़न दा यतन करिए। विचारां दी आरंभता तो पहलां दो

ज्योति कैसी आरती हुए बवखंडना तेरी आरती अनत्ता शब्द व जंत भेरी राव सहस तब नैन नैन है तोय को सहस मूर्त न एक तोई सहस पद वे मल ननिक पद गंध में सह तब गंध चलत मोय सब मैं ज्योत ज्योत है सोए तिहद चानण सब मैं चानण हुए गुरसाखी ज्योत प्रगट हुए ज्योत इस भावै सो आरती हुए

गुरु रामदास रखो शरणाई एक ओंकार सत प्रसाद आसा महला चौथा छंद कर चौथा तन तन सह श्री गुरु

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करण सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा देवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दाखे लख करोड़ सच्चे सवतान सच्चे सबजो सच्ची तेरी सिख सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच तैन सच जो मज मैं सो कच निकच मंगला पहला
1: वड़ी वड़ी जा वड़ा ना वड़ी वड़ी जा सच नया वड़ी वड़ी जा नचल था वड़ी वड़ी आई गण ला वड़ी वड़ी आई वड़े सुभाव

मन इच्छत ही फल पावत है, रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है।

तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगर बस बहका जोगी सुनते आवंज ते लख नाम करता सुखम मूर्त नाम रंजन काया काया का सतिया मन संतोख जय देने के विचार।